रहाऊ। साचे नाम की तिल वढाई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना उह मरै न होवै सोग, देंदा रहै न चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारै ते कम जात, नानक नावै बाज समात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव। मोकौ राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंतु उपाए। ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल, साध बल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन। हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाणा। हर त्यावै तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी। से मुकत पाए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ, त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता।
तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड़ अवर ना कोई, तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरता जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जान जाने, हर गुण सद ही आख वखाण, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर वेखै जाणै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पई ले निवासा, पाणी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हौ जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म पाया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साद संगत भाज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जानम बिरथा जात रंग माया कै रहाउ, जप ताप

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो भद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेवो। आप अपने बुध है जेती, बरनत पिन पिन तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्या है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके पाप तनक मोहरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा।
खड़ग के तमै सरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो हो सहाई, दोष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जानेओ, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ, सब तुहे बखानेओ। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों ता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तय सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाहे तेरे छड जाहे पहु जल बिखम असगाहो गुर सबदी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद।

पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडाओत पुन वड्डा है रहाओ साक्त हर रस साधना जाने अतने अंतर हमें कंडा है ज्यो ज्यो चढ़ चुभ दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर।

सारी कोई नाम न जाने मेरा। बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखराज ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभागे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास्या हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे करनो ने दावे ताए सब थाई होना सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होना सहाय। दसा पातशाही की जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप जिया के चरण कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी अरजोई। आप जिया का कोटान कोट शुक्र लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जिया ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संतानू निहाल किया है। इस वेले आप जिया के हजूर कीर्तन सवेले साहब जी के पाठ सुखासन की सेवा हुई। बाणी का पाठ करद्या सुखासन की सेवा करद्या अनेक ही प्रकार दया भुलां गलतियां हो गई हो। अनजान बच्चे समझ के बख्श लो। अगो वास्ते शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शनी। आप जिया के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल बतीत होया रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल बतीत कराना। अमृत वेले का जागना बख्शना। इस वेले आप जिया के पावन सुखासन साहब तैयार हैं। आप जी अपने आसन से विश्राम करो। समूह संतान छुट्टियां बख्शो। अखरवाद घाट पड़िया पुचुक माफ करना। सरबत दे कार्ज रास करने सही संत प्यारे मिलने जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रव रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछुड़े सो संगी गनिये बिनस जाए जो निमक में है सो अलप सुख पनिए रहा।

अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप कर है आनंद जन अचर्ज अनूप सामत देहो दयाल प्रभु

साहिब जी सतना वाहिगुरु साहिब जी सतना वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आदि गुरु ए नमः जुगाद गुरु ए नमः सतगुरु ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पाहु कल कले स्तन माहे मिटाहु सिमरो जास विसंभर एक नाम जपत अगनत अनेक भेद पुराण सिमरत सुदाख्यर किने राम नाम एक आख्यर किनका एक जे जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे का किए कै दरस तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभ के सिमरन गर्भ न वसै प्रभ के सिमरन धूप जम न सै प्रभ के सिमरन काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछु बिगड़ न लागे प्रभ के सिमरन अन दिन जागे प्रभ के सिमरन पावना व्यापे प्रभ के सिमरन दुख न संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन विधि सिद्ध नव निध प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध प्रभ के सिमरन जाप जप तप पूजा प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ के सिमरन दरगह मानी प्रभ के सिमरन होय सो भला प्रभ के सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराय नानक पाके लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उधरे मूचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरन सब के सुझे प्रभ के सिमरन ना ही जम त्रासा प्रभ के सिमरन पूर्णासा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाये प्रभ जी वसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरे ते से धनवंते प्रभ को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरे से बेहमूता जी प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभ को सिमरे से परोपकारी प्रभ को सिमरे तिन सदबलहारी प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन निर्मल बीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद का नेरे प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभ के सिमरन कारज पूरे प्रभ के सिमरन कबू न चोरे प्रभ के सिमरन हर गुण बानी प्रभ के सिमरन सह समानी प्रभ के सिमरन नेचल आसन प्रभ के सिमरन कमल विगासन प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरे से जिन जिन को प्रमाया नानक तिन जन शरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चहु कुण जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगला कारा हर सिमरन में आप निरंकार कर कृपा जिसा बुझाया नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना गड़गड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे सन सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल हो वह तारी हर को नाम किन माय उधारी अनक पुने चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पापर हरे गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुखनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परे हर का नाम जपत निस्तरे अनक माय रंग तिखना बुझावे हर का नाम जपत आघावे जे मार्ग एहो जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ध्याइये नानक गुरुमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तय पार पराही अनक बिगन जय आय संघारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जोन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबूना तो वे हर का नाम कोट पाप को वैसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग जय मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम उवा संग तोसा जय पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पद तेरा को ना संजानू हर का नाम तह नाल पछानू
जय महाप्रयान तपत बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा तिरखा मन तुझ आकर खे तह नानक हर हर अमृत पर खे भगत जना की बरतन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर अवखत साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्मजन की नोदान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बृद विवेक हर का नाम जन को मुकत जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जगत का परे न भांग हर का नाम जन की बढ़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जगत कछनाई व्योग जन दाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मान खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रसराते सुन समाध नाम रसमाते आठ पहर हर हर जन आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संकेत तरे पार जात एहु हर को नाम काम तेन हर हर गुणगाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवसे संत प्रताप दूत सब नसे संत कथन वट भागी पाइये संत की सेवा नाम ते आइये नाम तुल कछ अवर न होए नान गुरुमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरति देखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास करम धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरे अनेक प्रकार के बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राति व्रत नियम करे बहु पाती नहीं तुरु राम नाम विचार नान गुरुमुख नाम जपिए एक बार नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महादास तपीसर थी वे अगन माहे हो मत प्राण कनक असो है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमखन में कर शरीर कटावे तो पीहो में मैल न जावे हर के नाम सम सर कृष्णाय नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कभू न दिखे अटरे जल तोवे बहु देह अनीत सुध कहा होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत स्याण जम का पौ व्यापय अनक जतन कर कृष्ण न त्रापे पेक अनेक गनी बुझे कोट उपाव दर गए नहीं सीजे छूट सुनाही उपयाल मोह व्यापे माया जान अवर करतूत सगली जमनाने गोविंद भजन बिन तिन नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाय नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जेको अपनी शोभा लो रे साध संग एहो में छोरे जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की सर नहीं पड़े जे जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जा का मिटे अभिमान आपस पूजो जाने नीचा सौ गनी सब ते ऊंचा जा का मन हो सगल की रीना हर हर नाम तेन घट घट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सब दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा ने तन को तन तेरो नाओ निथाओ कनाओ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सकल कटा को देव दान करन करावन हर स्वामी सकल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संग आप पर बराते तुमरी उस्त तुमते हुए नानक अब न जानस कोई सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सकल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मलहरिया सगल उद्यम में उद्यम पलार का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कट बसे हर नाम सलोक निर्गुने आ रहे हैं एनेया सो प्रभ सदा समार जिन किया ती शीत रख नानक निविहीना अष्टपदी रमैया के गुंचेत प्राणी कवन मूलते कवन दृष्टान जिन तू सास सवार सिगारे गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया पार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूद वृद पयाओ पर साख सहन मुख अपयाओ बैठ को दयान ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श ले तो नानक सी जय जे प्रसाद थर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पावन पावन सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना
तिसे त्याग अवर संरचना ऐसे दो मूड अंध व्यापे नानक कारण देहो प्रभापे। आद अंत जो राखन हार तिसे प्रीत न करे गवार जा किसी वन निभावे था सु मूड़ा मन नहीं लावे मन नहीं लावे जो ठाकुर सरसदा हजूरी ताक बनता जाना दूरी जाके टहल पावे दरगे मान किसे विसारे मुग्ध अजान सदा सदा एह भूलन हार नानक राखन हार अपार सदा सदा एह भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कोड़ी संग्रचे साच छोड़ झूठ संग मचे साच छोड़ झूठ संग मचे जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो हुवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन ले उधारे तो हे गर्दव प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत विकराल नानक काल देहु प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात भार पेक अंतर मलमाए छप सनाए कच करे छपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोक स्वान अंतर अगन पार तन स्वागल पात्र कैसे तरह अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेह ओढ़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डोरा नहीं कहिए तो समझे पोहरा कहाँ विष्णपद गावे गुंग जतन करे तो पीसुर पांग के पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दिन बेनती करे नानक तुम्हारी कृपा त्रय संग सहाय स्वाव ने चीत जो बैरायता सुप्रीत बलवा के ग्रह पीकर बसे आनंद केल माया रंग रस है दृढ़ कर मने मने प्रतीत काल न आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मुंह झूठ विकार महालोक त्रो यहां जुगत बिहानी कहीं जन्म नानक राख लेव आपन कर क्रम तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तू मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सो कनेरे को ने जाना तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवान सगल समग्री तुमरे सुतर तारी तुम ते हो साजकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक दीन हर पर छोड़ के लागे अंसुआई नानक कहूं नसी जय बिन नावे पुत जाय अष्टपदी दस पर तू ले पाछे पावे एक वस्त्र कारण बिकोट गवावे एक पीना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा कहो का करे जी ठाकुर से नाही चारा ताको कि जय सद नमस्कार जाके मन लागा परम मीठा सर्व सुख कहू मन उठा जिसे न अपना हुक्म बनाया सर्व तो नानक तिन पाया अगनत साहू अपनी दे रास खात पीत परते अनंत उल्लास अपनी अमान कछु पाहु साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही कहे बहु उसका विश्वास न होवे जिसकी बस सागर रखे प्रभु की आज्ञा माने माते उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जाना अनेत फिर की छाया से रंग लावे ओह बिन से ओ मन पछतावे जो दिशे सो चालन हार लपट होते अंधार पटाओ से जो लावे नहीं ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाए मिथ्या तन तन कुटुंब समाया मिथ्याओ में ममता माया मिथ्या राजोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि अशुभस्त्र मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या तो मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे मिथ्या नेत्र पे कृत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा मिन बुझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले प्रीति साकत की आरजा साज बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुकावता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय में बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम जो कृपन के निरारत नाम तन तन तेजन जेकट पस्यो हर नाम नानक तह के बल बल जाव रहत अवर कच अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गण लावत जानन हार प्रभु पर बीन बार भेग न कहो पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभु जाता नानक उंजन चरण प्राता करो बेनती पार भव सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यानव सगल ते रहत सब किस जाने आतम की रहत जिस भावित ले लड़वाए थान थ्रंतर है समाय सुर सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद सत्य अमृत खाए तिष ठाकुर को रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत कर परम गत पावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद संग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ ब्रह्म भंडावे तिसे त्यागत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सोई जे मन आठ पैर ताका जस गावे जे प्रसाद तू सब को माने
ਮੁਕਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਮੱਖਣ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਹਿਰਦੈ ਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜੇ ਪੱਧਰ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਪਰਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੂ ਕੰਜਨ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵਲਾਓ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾ ਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੋਖਨ ਪਹਿਰੇ ਜੇ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਤ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈ ਈਗਾ ਉਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੇ ਵਿਸਵਾਸ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ

ज्ञानी के सकल मनमा है ब्रह्म ज्ञानी का। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने फेर ब्रह्म ज्ञानी को सदादेश ब्रह्म ज्ञानी कथया न जा ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जायद आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की तो ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुकुद जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनंत का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी से शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उतारे जो अंतर नाम सर्व में पिक है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ओ परस सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या ना ही रचना परस मन में प्रीत निरंजन तरस पर त्रिया रूप न पिक नेत्र साध की टहल संसंग हेत कारण न सुने कहो कि निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मनते टे सो इंद्र जीत पंच दोगते रहत नानक कोट में देखो ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पहन कर्म कर पहने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल तरम काहू फल की इच्छा नहीं वाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप निर्णय अवरे नाम जो पावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मनते बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल होवे किस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की ठहल करे नितनी मंतन अर्प विसन परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर भोते है राम नाम आत्म में सोते राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उदय जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमरत पूजे मूल सुखम में जाने अस्थूल जो वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जो वर्णा में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुगुद पात्र को उतारे सर्व रोका उकद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहु जुगत की देना पाइये तरम नानक तिस मिले जिस लिखया तोर करम जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसम तन पाहे तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो राह दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसे जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुकत सो कहावे तैसा हरख तैसा उसो सदा आनंद तह नाहि वियोग तैसा सुग्रम तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ता ऐसा जुगत नानक हो पुरख ये जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभु पावे सोई फुन होग बसरे आप हो अनत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसे मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहनिहार सलोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पहि तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी स्रोते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कव का पिछारे कई कोट नवतन नाम त्यावे नानक हृदय का अंत न पावे कई कोट पहि अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपग आत्म निकोर कई कोट पर दर्प हीरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व उपाय कई कोट पात्र वृत ने बजाय कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सचियर सूर नक्षत्र
ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਾਚ ਸਤਾਮ ਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸ਼ਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰਜੀ ਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਿਮਰਨ ਸੁਵਰਨ ਥੀ ਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੋਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੇ ਜੀਵੇ ਮਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੀ ਖਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ

संत कै दुखन यार जा कटै, संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक मह पाए। संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभा तेहीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत किरपाल किरपा जी करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के

नाना पे करे इक रंग, नाना बिध किनो विस्तार, प्रभ बिनासी कंकार, नाना चलत करे किन माहि, पूरहे ओ पूरन सब ठाए, नाना बिध कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई।

रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जा की वाणी सत पुरख सब माहे समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत।

सत बचन साधु उपदेश सत्य जन जा कह हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोय नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सत।

पूजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करन करावन तिन मूल पछान।

जाई। बुझे बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत।

लश्कर रखे, पसम करे लश्कर कोट लखे, जिसका सांस न काटती आप, ताको रखत दे कर हाथ, मानस जतन करत मोपात, तिसके कर्तव्य बिरते जात, मारे न रखे अवर ना को

अवर से आनप सगली चाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के

तिसकै संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिक्की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुर मत मल हिरै।

सुनकर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पीख।

जत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सद बलहारी।

से नानक परम मोह दुख तहते ना से। तपत माहे ठांड वरताई अनंत पया दुख नाटे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूरन उपदेशे।

सुत मीत कुटुंब अरबनता, इनते कहूं तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहूं कवन छुटकार, असस्ती।

साजन संत करो इहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो, भगत पाए तरिए संसार, बिन भगती तन होसी चार, सर्व कल्याण सुख।

जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत को किसको गनी। जब एक कहर अगम अपार, तब नरग सुर्ग को कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए।

सुख आपन आसन, तै जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्रगुप्त किस

जन पाए सो समदर्शी तत्का बिता नानक सगल शिष्य का जीता जी जंत्र सत्ता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिसरा कहते कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी के जुगत जा कै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास।

नया वह जाए। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उभरे राखन हार ते आए। निरपो जपे सगल पौ मिटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख।

नानक मन परगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीटा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री कसकट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौनित अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अन्नत

सो बाहर अनंत कटकट व्याप रहया भगवान तरण माहे आकाश पयाल सर्व लोग पूरन प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म।

संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुब बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता दिस की एह रहत, सत बचन साधु।

किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत तिस पावैता करे विस्तार तिस पावैता एकंकार अनिकला लखी नह जाय जिस पावै तिस लय मिलाय कवन निकट कम कहिए दूर अपे आपा परपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत अपरतारा सर्व नैन अपेखनहारा सगल समग्री जाका तनाया अपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सबके मध अलिप्त रहे जो किश कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तलै समाए इससे होए सुना ही बुरा और कहूं कि न कश करा आप लाकर दूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच सारी सब साच ओत पोत आपन संग राज ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का इह सुआ जन कै संचित आवे ना।

नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साथ संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गो

जन पूरन कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय सबद अनाद वा जय सुन सुन अनद करे प्रभ गा जय प्रकट गोपाल महान के माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साथ संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक के सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मन सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤੁਅ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਣ ਗਣਿ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨਿਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਪਰਨਤ ਸੁਮਤ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਚੇਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਣੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇ ਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਧੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਧੇ ਹੈ, ਅਪੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ, ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਰਨ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਭਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਪੰਜ ਹੈ, ਅਚੂਜ ਹੈ, ਅਚੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾਹ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਚੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਭੀਤ ਹੈ, ਅਵਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੀ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੌਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ, ਕਲੰਕ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰਨ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਧੇ, ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰਮਾਣੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕਮਾਤਾ, ਅਪੇਖੀ ਅਪਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ, ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ, ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੰ, ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ,
नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेति अपेदीयानामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं ते आजोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं उजंग पर्याद छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजे राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माहमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल पोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पूगता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसा होय फैलियो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हुन जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानही चिह वेद और कतेब रूप रंग न जात पात सो जानही कह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चत्र चक मानई पुरतीन लोक चौदह के बिख जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गण पंचन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अर्पेख सर्वशास्त्र न जानही जिहि रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नित पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र नावई वह चित मधुभार छंद तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाह शाहन शाह राजान राजपानन पान देवान देन उप देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अभंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रण मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म असर्वापर्णाढ्य अंडन पाढ़्य चाची छंद तो प्रसाद
गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियंकरियं निर्नामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र परति चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र पृथ्वी स अधिस अदृश अकृश भगवती छंद तो प्रसाद कथते के आछिज देस के आ पिज पेस के आगंज कर्म के आ पंज परम के आ पिज लोक के आदित सोक के अवधूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के तर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपो अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कर रही मैं रिहा के पाक बेअब है के गैब उल गैब है के अफूल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजन के राजक रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र जान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मन है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परम फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन अल वजू है तमाम अल रुजू है हमेशा सलाम है सलीक हतमुदाम है गरीब उल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बेलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम है रुजू अल निधान है हरीफ उल अजीम है रजाई की यकीन है अनेक उल तरंग है अपेद है अपंग है अजीज उल निवाज है गनीम उल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुदुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तों पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आदि रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवरगंग त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है किनर कंग प्रणास है पृथुअल प्रवास है निरुक्त सदा निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलिख हैं अदिख हैं अलेख हैं अपेक हैं अडाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगम्भ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद तो प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद तो प्रसाद नमो नर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात ईर्षाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्नुल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीम उल खिराज है गरीब उल निवाज है हरी फुल शिकन है हिरासुल फिकन है
कलंक अंग प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाय करहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब की राह है, के नरकंग प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमें सुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परंग परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेसुल अलेख है, अमेसुल अपेख है, जिमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुर्रत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुबास है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विपूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रवाह है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुपार छंद तो प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम, अरपर अगंज हर नर प्रभंज, अनगन प्रणाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड पर नर अमंड, अनुभव अनास मन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अंचिज अंग आसन अपंग, उपमा पार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अनास त्रित तर तुरास, आजान बाहु एक है सदाहु, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंचिज गात आज जनाबात, अनचंजगात अनरंजबात, अनटुट भंडार अनठट अपार, आडीठ धर्म अत टीठ कर्म, अनबरण अनंत दाता महंत, हर बोल मना चंद त्व प्रसाद, करुणालय है हर कालय है, खलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्व उबारण है, कृत के तरण है जग के कर्ण है, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वं पर है सर्वंकर है, सर्व पासे है सर्वनाश्य है, करुणा कर है विश्वंभर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है खलखंडस है, परते पर है करुणा कर है, अजप्पा जप है अथप्पा थप है, अकृता कृत है अमृता मृत है, अमृता अमृत है करुणा कृत है, अकृता कृत है तरणी कृत है, अमितेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है अमृता मृत है, अजबा कृत है अमृता मृत है, नरनायक है खल कायक है, विश्वंभर है करुणालय है, निरपनायक है सर्व पायक है, पाहुपंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्म है सर्व आत्म है, आत्म बस है जस के जस है, कुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग काम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पोज पोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अचरी छंद, अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अडाह, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद, नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, रिकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विपूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, करेमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब विपूते गजायब गनी में, हरियं करियं करीमुल रही में, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वयुक्ते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰ ਅਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ, ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂਤੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਪੁਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ, ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਧ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾ ਗੇਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਜੀਤ ਫੇਰਾ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂਰ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ, ਕੌਣ ਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ੍ਰੀਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ, ਪੌਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਭ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਦੇਖੈ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ।

वाचक अनेक सो एक हिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। उन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब है अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोटिश नानक जातक दान अनेक स्वयं बरसाज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर ना देह तरेंगे। कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नात फिरे हो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहूं सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहुले पाहन पूज तरयो सिर काहुले लिंग गरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा में है काहू पछाह कोसी सिनेवायो। कूब तान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दय मोहे बचाव हो। सुखी बसह मोरो परवारा सेवक सिख सबह करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करै सब बैरन को आज संगरै। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरया मरण काल का त्रास निवरया। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जुजु करे हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना। जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्त तब देहे अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार।

जी बोलो जी, प्रपास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू रखवाला सदा सदा हो, तू तो त्याई जी जंत सब तेरिया, तू रह समाई, जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार बचाई, चिंता छड अचिंत रहो नानक लगवाई। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वाह, श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हो सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जी जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदा बैताए, सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियों की जोत, गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके। बोलो जी, पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिना नाम जपया वंड के छकया, देग चलाई देग वहाई, देख के अंडिट किया तिना प्यारियां सच्यारे की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए, गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, सिखी केसां स्वासां संग निभाई, धर्म नहीं हारिया, इन्हां दी कमाई का ध्यान करके। बोलो जी, पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारे की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया, रियायत देग देग फतेह, बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी, सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे पोंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, खालसा जी के बोल बाले। बोलना जी, सिखा दा मन नीवा, मत उची मत भद्दा रखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे अकाल पुरख सतगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जो, श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारिया गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया, तिना की सेवा संभाल, खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो, निमाणिया दे मान, निताणिया दे तान, नियोटिया दी ओट, गुरु गरीब निवाज, निगत्या दी गत, निलज्या दी लज, नितरिया दी तिर, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, दसां पातशाहियां दी जोत, शब्द गुरु दाता जी, आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है, सच्चे पातशाह आप जी दे पाणी अंदर चार पहर सुख रहण बती पई है, महाराज जी आप जी दा तरस होया, मेरा मत होई, सच्चे पातशाह जी अमृत वेला आप जी ने बख्शिश किया, अमृत वेले दे दर्शन दीदार आप जी दे होए ने, महाराज जी सचखंड तो चाले पा के आप जी ने तख्तां ते प्रकाशवान हो के खुले दर्शन दीदार बख्शिश किए हैं, महाराज जी पवित्र हुक्मनामा बख्शिया सतगुरु जी, उपरंत सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम, सुखमनी साहब जी का पाठ पंजा बाणियां का नितनेम होया, गुरु गरीब निवास जी आप जी के टहलियां सेवकों पासों सेवा करदे हां, बाणी पढ़दे हां, आप जी की हजूरी विच बैठदे हां, विचरदे हां, बेअंत भुल्लां हो गई, तुसी बख्शण योग हो महाराज जी, सदा साज के रखियो निवाज के रखियो, महाराज जी आप जी दे दर कर दे प्रीतवान भाई जैरी अते बीबी हरलीन कौर समूह परिवार की सेहत तंदुरुस्ती चढ़दी कला लई परिवार वालों अरदास बेनती है, सच्चे पातशाह अरदास बेनती करदे हां, गुरु घर की बन रही बिल्डिंग वास्ते बेअंत भेटा माया परिवार वालों आप जी दे दर ते भेटा की गई है, प्रवान करनी महाराज जी भाई जैरी अते बीबी हरलीन कौर समूह परिवार को चढ़ती कला परिवार की इच्छा है, तंदुरुस्ती सेहत याबी बख्शिश करनी, गुरु गरीब निवास बेअंत संगतां आप जी के सोहने दरबार विच गुरमुख रूहां हाजरियां पा दईयां ने, महाराज जी आप जी सब दे नाम जाने जाण, गोविंद बोलिया
ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਛੇ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇੱਕੋ ਵਰਤਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਲਗਾਓ, ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੋ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੋ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਡਿੰਪਲ, ਬੇਟੀ ਆਦਗੁਣ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਅਕਾਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਸੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਏਕਤਾ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਲਾਗਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ।

करे सो हमरी रचया करे सो कलगी तर जगदीश बोले सो निहा। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चा सप्तान सच्चा सब जोर। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच।
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जा सच ने आओ।

बोलो चरखा चक्की चक थल वारो ले बहुत आनंद लाटू मां दाणिया अनगा पंखी पौंदिया लैनसा सूए चाड़ पवाई जंत नानक पौंदिया गणित ना अंत।

0: कंधै पत गवाई ना वै किस थाए न पाई
1: रहना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुपाए हर का नाम मन साय नान कुरंदर करे सपाया संदेश ते ने केवल हाउ मैं शब्द जलाए पौड़ी।

0: पंडित हिकमत उज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार, जति सदा वे जुगत न जाने छठ बह कर बार, सबको पूरा पे हो वे कट ना कोई आख, पथ परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: सोज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए, सब निशाला मारियां करता करे सोए, अगे जात ना जोर है अगे जीवन में, जिनकी लेखे पत्व बे चंगे से, कि पूरी तुर कर्म जना कृत पाया।

जुग जुग फेर वटाइया ज्ञानी बुझ ताहे सतजुग रसन तो का धर्म गैरथ वाहो त्रित रथ जत का जोर गैरथ वाहो द्वापर तप का सत गैरथ वाहो कलजुग रथगन का कूड़ गैरथ वाहो।

मंजूर चली चंद्रा उलकान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ल आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मैं बेद सरबण हुआ नाम खुद अलो पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी वल किया चारे वेद हो चार पड़े गुण तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदा औ नानक मुखन तर पाए पौड़ी सतगुर।

0: भरपूर।
1: मत्थे टिक्का पेड़ धोती कखाई, हथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेश तान ले पूजे पुराण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना। देखा चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटे वे मत पिटे, हवाना सदा फिटे। कन फिटे फेड़ करे, मन झूठे चुली परे। कहो नानक सच ते आई है,
2: सच होवे ता सच पाई पौड़ी।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद देव पुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तो है।

जस जय जय जंप असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंप हे काट हे सो पाप तिन नरों के।

तेरे सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुग्ध नीचान जन नान को हार बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पिया

ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਦਾ ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ

सगल समग्री तुम रह सूतरम तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावे धाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया दीप चलाई तेग वाहे देख के अंडिठ कीता तना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म है सीस दिते बंद बंद कटाए कोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां ने चढ़ाए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिक्खी के सास संसार निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्याव चितावन का सदका सर्व सुखोय जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रश्यारियाच देखते फतेह बिरद की पैग पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिक्खी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदार नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशना चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मरनी मत उची मत पत का रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दवतार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो हे नमाण्यो के माण नताण्यो के तान न्यूटियां दी ओट सच्चे पिता वाहेगुरु तन तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी दे चरणा अरदास बेनती आप जी दी महान बख्शिश हुई अमृत वेले आप जी ने अपने तख्तां दे प्रकाशमान होके संगत नूं दर्शन दिदारे बख्श के निहाल कीता अमृत वेले पावन हजूरी अंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन होए ने उपरंत आए दे हुक्मनामे दियां विचारां होईयां छे पौड़ियां आनंद साहिब दे जाप होए महाराज जी समुची सेवा निभाउंदिया बाणी पढ़दिया कीर्तन करदिया विचारां करदिया आप जी दी सेवा संभाल करदिया होईयां बेअंत बेअंत पुन्नां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उत्तम बख्शिश करना जी बाणी दा भाव आईयां संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करने सभना दियां तिल बल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना नूं दरों करो नामदान गौरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी सुखां दा प्रकाश करना देशा विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जीओ बिन संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन जाप सरवण करदे आप जी का धनवाद करदे मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते ऑनलाइन भेटा कीते महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी आप दर घर दे सेव बच्ची सहज कौर मावी के जन्मदिन की खुशी विच परिवार वालों धनवाद करदे अरदास बेनती करदे ने कृपा करनी बच्ची के सिर ते मेहर प्रयात रखना लंबी आयु
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਬੱਚੀ ਸਹਿਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕਿਆ ਉਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਤਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ।

सतगुर बचन लहू रहाओ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रै बचन उपहास कहू। जो सुर

जहां कीर्तन साध संगत रस, तह सगन बास फलानद, बिन सिमरन कोट बरख जीवै, सगली औद वृथानद, एक निमक गो

बिन गुर भेटे मुक्त न काहू, मिलत नहीं जगदीसै, खोजत खोजत एह बिचार्यो, सर्ब सुखा हर नामा, कहो नानक तिस भयो।

नरक घोर मैं उर्द तप करता, निमख निमख गुण गाही रहाउ, अनिक जन्म प्रम तो ही आयो। मां

झूले से छत निरंजनी मल तक सब बैठा गुर हटिया है। कर है जी गुर फुरमाया सिर जोग अलूनी चटिया है। लंगर चले गुर शब्द हार तोटना आवे खटिया है। खर्चे दित खसम दे आप खहदी खैर दबटिया है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसा कुरसा झटिया है। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया है। सच जी गुर फुरमाया क्यों ए दू बोलो हटिया है। पुत्री कौल न पालियो कर पीरो कन मुरटिया है। दिल खोटाया की फिर न बन पार उचाए न छटिया है। जिने आखी सोई करे जिन कीती तिना थटिया है। कौन हारे किन उबटिया है। जिन की तीसो मनना को साल जिवाहे साली धर्म राय है देवता ले गल्ला करे दलाली सदगुर आखै सच्चा करे सा बात होवे दरहली गुर अंगद दी दोही फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा सह डाली दर से वे उमत खड़ी मस्कलाय होए जंगाली दर दर वेस खसमदाय नाए सच्चा बाणी लाली बलखंड बलवंड की भी नेक जान जिस बहुती शाओ पतराली लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर कियाली गुरसिखा के मुख उजले मन मुख थिए पराली पै कबूल खसम नाल जां काल मार दी काली माता की भी सौ सोए जिन गोए उठाली होर्यो गंग वहाई है दुनिया दुनियाई आखै क्यों नानक ईसर जगन्नाथ कुचह दी वैन विर क्यों माधाना पर्वत कर नेत्र पासक शब्द रिड़ क्यों चौदह रतन निकालियन कर आवा गौन चिल क्यों कुदरत है वे खालियन जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहने तरियोन छत्र सिर असमान की आड़ा चिक्योन जोत समाणी जोत माहे आप आपे सेती निक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उमत वेखो जी क्यों जा सुदो सुता लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जब तयोर नाल तो दहोर मुच गुरूर लब बिना हे मानसा जो पानी बूर वरिया दरगह गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ न लबई तू ठरूर नौ निंद नाम निदान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो वञै चूर नेड़े दिसै मात लोक

भजावै तूर, अनहद भजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहा। जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करै उतरै बो पार। नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा या मन नाहे। जे सिमरन करै तू केल, दीपक बांध धरियो बिन तेल। सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बिक काढ़ी ले मार।

राम कली कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंद च बंधन पाया मुक्त गुर बुझाया, जख नख सिख ए मन चीना, तब अंतर मजन कीना। पवन पत उन्मन रहन खरा, न मृत ना जन्म जरा, रहा उल्टी ले सख्त सहारं, पैसीले गगन मजारं। बेदियले चक्र पोयंगा, पेटियले राय नसंगा, चूकियले मोह मयासा, सस्कीनो सूर गिरासा। जब कुंभक पटपुर लीना, तय बाजे अनहद बीणा, बक्त बक शब्द सुनाया, सुनतय सुन मन बसाया। कार करता उतरस पारंग, कह कबीरा सारंग, चंद सूर्य द जो स्वरूप, ज्योति अंदर बहुत अनूप, कर ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर तरिया पसार। रहाओ हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन आलेख, दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसियत होरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। रहाओ नीम भयो आंब, आंब भयो नीबा, केला पाका चार, नालियेर फल सेबर पाका, मूर्ख मुग्ध नालियेर फल सेबर पाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हार पयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कमीर कुल जात पांत साज, चीटी हुई चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनीले कागद काटीले, गुडी आकाश मध्य परमियले, पंच जना स्यो बात बथुआ, चीत सुडोरी राखियले। मन राम नामा बेदियले, जैसे कनक कला चित मांडियले। रहा अनीले कुंभ पराईले, उदक राजकुआर पुरंदरिये, हस विनोद विचार करती है, चीत सुगागर राखियले। मंदर एक द्वार दस जाके, गौच रावण छाटियले, पांच कोस पर गौच रावत, चीत सुबशरा राखियले। कायत नाम देव सुनो त्रिलोचन, बालक पालन पौडियले, अंतर बाहर काज विरुदी, चीत सुबारक राखियले। वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित न गावो गो, अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावो गो। बैरागी रामै गावोगो, शब्द तीत अनाद राता, कुल कह कर जाओगो। राव पीड़ा पिंगुला और सुख मना, पौने बंद रहाओगो, चंद सूर्य दो समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख न जल में पैसो, जी जंत न स्थावोगो, अठसठ तीर्थ गुरु दिखाए, काटे पीतर नाओगो। पंच सुहाई जन की शोभा, पढ़ो पढ़ो न कहावोगो, नामा कहे चेत हर स्यो राता, सुन समाध समाओगो। माय न होती बाप न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया। राम कोई न किसे केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहा चांद न होता सूर न होता, पावी पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहां ते आया। खेचर कूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रण में परम तत् है, सतगुर हुए लखाया। राम कली कर दूजा बानार, सी ताप करे उल्ट तीर्थ मरए, अगन दे है काया कल्प की जय, असुमेध जा की जय, सोना गर्भदान दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजय। छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट न की जय, हर का नाम नित नित है ली जय। रहा गंगा जो गोदावर जाइये, कुंभ जो केदार नाइये, गोमती सहस गौ दान की जय। कूट जो तीर्थ करे तन, जो हिवाला गारे, राम नाम सर तऊ न पूजै। आस दान गज दान, सेजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित है की जय। आत्म जो निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजै। मन न की जय, रोस जमह न दी जय, दोष निर्मल निर्वाण पद चीन दी जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा, राम चंद प्रणवय नामा, तत रस अमृत पी जय। जसरथ राय नंद राजा राम मेरा, राम चंद राजा मेरा, राम चंद प्रणवय नामा, तत रस अमृत पी जय। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिया नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दरसै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जो पार सह न परसै। देव संसय गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मत सरे, पंचो मिल लूटे। रहा
हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते हो बुद्ध कभय ननासी कौरव दास सभय निसमझस भूल परे जैसे बोरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद ईड़ा पिंगुलाया और सुख मना तीन बसा इकठाई बेणी संगम तह पिराग मन मजन करे तिथाई संतो तहा निरंजन राम है गुरगम ची न बिरला कोए तहा निरंजन मैया होए रहाओ देवस्थान क्या निशानी तह बाजे शब्द अनाहद बाणी तह चांदन सूरज पौन न पानी जागी साखी जागी गुरमुख जानी उपजय ज्ञान दुर्मत चीजय अमृत रस गगनंतर पीजय इस कला जो जाने पियो पीटे तास परम

जर जर सुनि जर चराय जगन्नाथ से गोष्ठ कराय चौमुख दीवा जो द्वार पलु अनाथ मूल बिचकार सर्व कला ले आपे रहे मन मान ग्रत नाम गुहै मस्तक पदम दुआलय मणि माय निरंजन त्रिपमन तणि पंच शब्द निर्माण बाजे पुड़के चवर शंख कनगाजे दाल मल दे तो गुरम ज्ञान बेणी जाचा तेरा नाम राग नाटन नारायण महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सहपंग गुर प्रसाद मेरे मन जप अहनिस नाम हरे कोट कोट दुख बोकीने सब पर हर पास तरे रहाओ हर हर नाम जपया रहता है सेवक पाए करे किल बिग दो गए सब नी कर जो पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावे मुख बोले नर नर हरे पंच दो का साध नगर में एक एक खिन पल दूर करे वट पागी हर नाम ते आवे हर के भक्त हरे तिनकी संगत दे प्रभ जाचो मैं मूड मुग्ध निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन रामै नाम रले राम नाम जप्यो गुर बचनी हर तारी हर कृपले रहाओ हर हर अगमे गोचर स्वामी जन जप मिल सरल सरले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कह बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख साध पंच तातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाए जो देखे सस कमले उनमें कन कन कन हर गर जाए मन बिकसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवै देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मिलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जाप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर पर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीश राम पापी सरण रखे तुम बड़ पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे हमरे अवगन बिख्या बिखाय के बहु बार बार निमखे अवगन यारे पाथर पारे हम तारे संग जनखे जिन को तुम हर राखो स्वामी सब तिन के पाप क्रिखे जन नानक दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हर नखे नट महला चौथा मेरे मन जाप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण के तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो बड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उदरियो प्रभ किए पतत पवगे गुण गाव छी पा दुष्टार्यो प्रभ राखी पैज जन गे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हो बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जय धूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रभ धारो हम सेवो तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रतारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश

न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रभु तुम ही गुण जानो प्रभु अपने। माया फास बंद बहु बंदे हर जपियो खुल खुरने, जो जल कुंच तदुए बांधे हो हर चेत्यो मुख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग जुग जुग ने, तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रवड ने। नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दया दया प्रतारी लग सतगुर हर जपने। रहाओ हर तुम वडा गम है गोचर स्वामी सब ध्यावै हर रुडने, जिनको तुमरे वड कटाक है ते गुरम

इहो परपंच किया प्रभु स्वामी सब जग जीवन जुगणे ज्यो सरल है सरल उठै बोलहरी मिल सरल है सरल समणे जो प्रभु की अस तुम ही जानो हम ना है हम नह जानी हर गहने हम बारक कौरित उसत पारो हम करो प्रभु सिमरणे तुम जल ने दहर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचै हर देव कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरेन रवाल सब दालद पंज दुख दाल हर हो नजर निहाल रहाओ हर का ग्रेव हर आप सवार्यो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आप ते की खबर गुर पाई मन तन आनंदो आनंद भय।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैभं गुर प्रसाद। अनेक जतन कर रहे अंत नहीं हर अंत नहीं पाया, हर गम गम अगाध बोध या देश हर प्रभराया, रहा काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम राग राग दीन तेरे हर शरण हर प्रभ्याया, शरणागति प्रपालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर राख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख भंजन राया, पौ जन्म मरण निवार ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया, हर हार हर उर धार्यो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत्संग मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पछाता, रहा वड़ भागी गुर दसन पाया, गुर मिलिया हर प्रभ जाता, दुरमत मैल गई सब नीकर, हरे अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता, हर प्रभाए मिले सुख पाया, सब किल विक पाप गुवाता, राम रसायन जन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है बड़ भागी जन नानक चरण पराता, माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना मन भामनी, हर त्यायो परम प्रो पार ब्रह्म स्वामी, हर लख गुरु लखायो रहाओ, हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो, हर रायो हरियाण में लियो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो, प्राव मस्तके गुर प्राव मस्तके तुर लिखिया, गुरमति हर लिव लायो, पंच सब दरगह बाजिया, हर मिलियो मंगल गायो, पतत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो, ते गर्भ जो नी गालिए जो लून जल है गलायो, मात देह हर प्रभ गम ठाकुर गुर चरण मन मै लायो, हर राम नाम मै रहो लागो जन नानक नाम समायो, माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास पया गुर पाया, हर जप्यो भ्रम पौ पागा, पाए पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बेखीन पाए सत्याई हर उर धार्यो वड़ पागा, मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसम चार दिन चागा, खिन मैं बिनस जाए प्रताप है जम टन जम, खिन मैं बिनस जाए प्रताप है डंड धर्म राय का लागा, सत्संग प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का परचीर बहु फारे हर रंग नल है सुभागा, हर चार्यो रंग मिलै गुर सोभा, हर रंग चलू लै रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारै जो हर चरनी जन लागा, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन भज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन भया राम नाम है, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्याई है मेरे हर हर, जन जपिया हर जम जाला, जिन कै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला, जिन कै मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला, जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ न आवई गुर राखे हर रखवाला, हम बार किछु न जान हौ हर मात पिता प्रतपाला, करमाया अगनित मेलते गुर राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया सब किल बिखर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर भाज सब किल बिकाट, हर हर उतार्यो गुरपूरा मेरा शीश की जय गुरवाट, रहाओ मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलियो गुरपूरा है गुरबचन बिकानो हट हाट, मकर प्राग दान बो किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावै बो कंचन दी जय कट काट, हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकटि फोर परम पौ भागा लज भानी मुटकी माट, काल जो गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी भूख तिखाट, छका एक माली गौड़ा महला पंजवा,
एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन टहल हर सुख सार अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहा जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संसार संसार भोजन तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साधके तज लो मोह बिकार सब तजो दूजी आसरी रख आस एक निरंकार एक परम पूले सकता बिन गुरियां अंधार तुर होम ना सुहोया को न मेटन हार अगम रूप गोविंद का एक ना अनेक नाम अपार धन धन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार माली गौड़ा मैला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जपत होवत उदार रहाओ जाके सिमरन मिटाय तंद जाके सिमरन छूटाय बंद जाके सिमरन मूर्ख चतुर जाके सिमरन कुलाय उदर जाकै सिमरन पाओ दुख हरै जाकै सिमरन अपदा टरै जाकै सिमरन मुचित पाप जाकै सिमरन नहीं संताप जाकै सिमरन रिद विकास जाकै सिमरन कबला दास जाकै सिमरन निद निदान जाकै सिमरन तरे निदान पतित पावन नाम हरि कोट भगत उदहार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम सा संगत भज पूर्ण काम रहा बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत बूज दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण में सखा प्रात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरखे बरस मेघ जैसे पालन सरन सिंह गरुड़ मुख नहीं सर्प त्रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदो माहे ऐसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक करे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास को लियो निवाज रहाओ चरण संत है माध मोर नैन दर्श देखो निस्कोर हस हमरे संत टहल प्राण मान धन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरे चीत संत आ गया मन मीठ मेरा कमल बिकसै संत ठीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोय बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरा विखै हंत मुक्त जुगते हा निधान प्रभ दयाल मैं देव दान नानको प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब का संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सुख यो विश्राम सगल निध हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समाहे जिसते व्यथा कोई नाहे जी जंत्र करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाके दीबान बेमोताज नहीं किच कान सब कुछ करना अपने आप रे मन मेरे तुता को जाप साध

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरख है। गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदा वै ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अनिट कीता तिना। प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे सीस दित्ते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां श्वासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। चिते आवे चिते आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहु दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा, मत उच्ची मत पत दे राखिया वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे गरीब नवाज, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह, चवर छत्र तख्त दे मालक सतगुरु जी आप जी का फरमान है। लख खुशियां पातशाहियां जी सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। ते मां वाका अनुसार आप जी ने कृपा कीती है, अज आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी, काका टरवर मैरो सपुत्र जार्ज मैरो, लीसा मैरो अते बच्ची किरण दीप कौर सपुत्री, सरदार बलिहार सिंह, बीबी भुपिंदर कौर, करीब नवाज इस सुभाग जोड़ी दे आप जी के हजूर आनंद कारज होए हन। सतगुरु जी आनंद कारज दी मर्यादा नूं निभांदिआं आप जी के दस रहा पासों हुईआं बेअंत बेअंत भुल्लां आप जी ने खिमा कर देणीआं। अगे तो सावधानता बख्शिश करनी, सिर ते मेहर भरे हाथ रख के अपनी सेवा दे योग आप बना लेना। सतगुरु जी कृपा करनी, इस भाग जोड़ी दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखना। ग्रिस धर्म दियां खुशियां खेड़े नवाजने दे करके, नवाजना चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना, अपने चरण कमलां दा प्यार बख्शिश करना। दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखना, आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना। सेवकां दियां अरदासां दर ते प्रवान करनियां। सतगुरु जी इस वक्त सेवकां वल्लों आप जी नूं सुंदर पुशाके भेट कीते गए, आप जी ने अंगीकार करनी। सदीव काल पड़दे कजने बख्शिश कीते भंडारियां चुकड़ा प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे जी, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते। सतगुरु जी बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां, तिल फुल भेटां आप जी के चरणां विच अर्पण कीतियां। दर आई समूह संगत की हाजरी दर प्रवान करनी, सभना नूं दरों करों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना। गरीब नवाज कृपा करो, पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलन दी मत बुद्ध प्रदान करो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चेता वै, नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में। राज करेगा खालसा या की रह न कोए, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे, जो सब

मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै, मन तन प्रभ आराधियै मिल साध समागै।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नाम।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख बल वत्या कमाए संख पापी पाप असंख मूर्ख यार करे बनाए संख मलेच माल पाए असंख।

ब्रह्माणी ब्रह्माओं सत्सुहान ब्रह्म कमल सुरेंद्र भगत कमल कमल श्रेष्ठ कमला कमल सुरुष्टि महाकमल

ਸਾਲਾ ਦੀ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣ ਸੋਮਣਾ ਜਾਣ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਹ ਸਰਦਾ

धर्म कर्मी कर्मी सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोने कच्छ पाई उत पाए नानक गैण कर्म खंड का।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैलम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

आपने रंजन सोए।

जो तुम पावे साई पनी का अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कलवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक से करे पाप नानक नीच कहे जा मारे न जावा एक

समुद्र चाचा

अंगण नहीं पीता, इतने खप पैंता, इतने लै लै मुकरता, इतने मूर्ख खाही का, इतने अंगूठ तो चलता, ये बेदास तरीका बंद खलासी भाने

सोहन पंच प्रवान सदरी कर्म सवैन कच्छ खाई उत्थे पाए नानक गया कर्म खंड का ए

ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੀਆਂ ਸੁਣੀ।

ਹੈ ਕਰੀਏ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

संत पूर्ण मोह

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गलवड हत्या कमाए शांत पापी पाप अशांत मूर यार करे फिर अशांत मलेच माल पाए अशांत निंद

आकाणी ब्रह्मा सत्सुहार्तम कमण सुमेला भगत का

ਸਰਪਾਲ ਲਖ ਆਗਾ ਸਾਹਾਂ।

کنک نہیں پیچا اتنے خب سے میں تھا اتنے

ਸੱਚ ਮਨ ਸੁਰਾ ਸੁਤ ਕਰਮ ਖੰਡ।

कतना कभी मैं तो कत कभी को

मन रखिए पाओ।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख मूड़े आर करे सुधाए अशंख मलेश मल पाए अशंख निंदा।

ਕਿਆ ਵੇਖਾ ਕਵਣ ਸੁਣਾ ਭਗਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਸਿਰ ਕਵਣ ਕਵਣ ਸਿਰਫ ਦੀ ਮਾਂ।

ਕਾਂਠਾ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ।

ਸੁਣੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

कथना कभी नया तो कर कभी को।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर्ख यार करे सजाए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक चित्त

अंत न सुनी कहन नान, अंत न करना देन नान, अंत न देखन सुनन।

सोहन पंच प्रवान नदरी गर्म प्रवैनी कच्छ खाई उत्थे पाए नानक कैया।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी।

अशंख मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाए संत पापी पाप अशंत कूड़े आए बुराए संत मलेश मर पाए अशंत निंदक करे पास नानक नीच कहे मारे न जा जो सुख पावे सही परिपा।

अंत न सुनी कहन नाम, अंत न करने देर नाम, अंत न देखन सुन।

ਮਤ ਮਨ ਉਦਤ ਫੈਕਰੀਐ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੋ

ਗਾਵੇ ਵੇਖੇ ਆਸਰਾ ਕਤਨਾ ਕਤੀਨਾ।

अंत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत कूड़े आए संत मलेर माल पाए असंत निंद

ਨਾਨਕ

Obrigado.

सुहित तरसी सावधी तरम सामी करमी वह विचार सोहन पंच प्रवान नदरी गर्म सवैन कच्छ पाई उत पाए नानक गया धर्म खंड का एहो

Ketnya sutri,

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी।

संत जगत विज्ञान विचार।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय अशांत पापी पाप अशांत अंगूर यार करे फिर अशांत मलेर माल पाए अशांत निंदक करे नानक नीच कह क्या मारे न जाना के जो तुम पावे सही फलिका सदा सुना संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

अंत न सुनी कह नाम अंत न करना वे नाम अंत न देखण सुन नाम।

small, small.

ਜੋਰ ਸੁਪੈਨੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ।

0: केते केते रतन तुम होंगे
1: केतिया पानी केतिया पानी केते पाप रेंदर
0: केतिया सुती नानक अंत ना आता।

निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच

तू गावत विख्यात राम।

असंत मूर्ख अंध घोर असंत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गड़बड़ पापी पाप असंत कूड़े आर करे फिर संत मलेर मल पक्ष है असंत निंदक करे पा नानक नीच कह क्या मारे न जाना एक जो कुछ पावे सही सही कर सदा खिलाफ संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ

ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਤੂੰ।